0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुल्यो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: बाबा जी मेरा व्याह नहीं हो रहा, कोई मंत्र था फूको बच्चे थे।
3: 647-888-6000।
2: बाबा जी आ केड़ा मंत्र है?
3: बच्चा ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो व्याह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी?
3: बाबे दा घर भी एना नहीं बसाया है, NRI मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते लई परोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 647-888-6000 और विजिट NRIMB.com।
5: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
6: HK Movers,
5: local and long distance,
7: we also ship cars,
5: Kailor transport and moving services.
6: For service with a smile, give us a call.
5: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
6: 416-524-6704.
5: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
7: Long distance moving specialist.
5: HK Movers.
8: HK Movers.
9: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
10: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड, कनेडियन मेड इंपोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर।
9: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 6225500।

0: छेती चलो अशोक ज्वेलर्स 7198 एयरपोर्ट रोड माल्टन इन अशोक प्लाजा फोन नंबर है 9056714290।
1: बेड डाइनिंग टेबल सोफा कर ले लेना या देना तोहफा।
2: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर कस्टम मेड कनेडियन मेड इम्पोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर
1: 7550 किम्बल स्ट्रीट मिसिसागा कॉल 6473825500।
3: ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ।
4: ਹੋ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
5: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਟ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਐਲਈਡੀ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਟੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
4: ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ 6477080079
6: इंजन रीबिल्ड ट्रांसमिशन रीबिल्ड रिपेयर डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर इलेक्ट्रिकल रिपेयर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
7: इना कोड़ा साला दा तजर्बा।
6: हुन एड्रेस भी लिखा।
7: ले लिख ला 1 गुड मार्क प्लेस इटोबी कोक यूनिट 5
8: कॉल 6477069257 6477069257।
9: खुशियां दे जश्न बनाओ ते रुसियां नू मनाओ अपने नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ। लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ ताजियां स्वादलियां मठियाईयां अते जायकेदार फूड लई हमेशा याद रखो लाली स्वीट्स जित्थों तुसी डाइन इन या टेक आउट भी ले सकते हो। ग्रेट फूड बेस्ट सर्विस लई लाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंचो 499 रे लॉसन बुलेवार्ड ब्रैम्पटन कॉल 905-450-9054-506464।
10: Lali Sweet and Restaurant, Lali Sweet and Restaurant।
11: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320
12: पील रेनोवेशन दा पैगाम। अगर तुसी अपने घर या ऑफिस विचले वाशरूम सिर्फ एक हफ्ते विच तैयार करवाना चाहुंदे हो सिंपल तो लेके हाई एंड दे वाशरूम पाव लग्जरी वाशरूम तैयार करवाउण लई चेते रखो वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन एक्सटीमेट बिल्कुल फ्री एक हफ्ते विच वाशरूम तैयार करवाउण लई कॉल करो भुपिंदर सिंह 6476481847 6476481847 वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन।
13: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो
11: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320
12: पील रेनोवेशन दा पैगाम। अगर तुसी अपने घर या ऑफिस विचले वाशरूम सिर्फ एक हफ्ते विच तैयार करवाना चाहुंदे हो सिंपल तो लेके हाई एंड दे वाशरूम पाव लग्जरी वाशरूम तैयार करवाउण लई चेते रखो वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन एक्सटीमेट बिल्कुल फ्री एक हफ्ते विच वाशरूम तैयार करवाउण लई कॉल करो भुपिंदर सिंह 6476481847 6476481847 वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन।
14: वेलकम बैक चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो। तुसी इस वक्त सुन रहे हो प्रोग्राम दे विच दादी के मेला किरतियां दा तुहाडे शहर दे विच हर साल दी तरह इस साल भी 7 सितंबर नूं होण जा रहा है जिहदे विच प्रसिद्ध कलाकार हरिंदर संधू अमन धालीवाल दा खुल्ला अखाड़ा होवेगा और इस दे नाल वख वख होर फनकार भी जिहड़े ने पहुंच रहे ने ਤੇ 7 ਸਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਲਡਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿਚ 6472131300 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਾਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 5-7-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। 5-7 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ ਜੋ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9-10 ਤੋਂ ਐਜ ਏ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ।
15: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ।
14: ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

तेरी यादों के सहारे जी रहा हूं, क्योंकि तू ही है आशिकी, तू ही है बंदगी। कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे बिना भी जीनी पड़ेगी जिंदगी।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

गाओ हरे ला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी कमेला कैसा रहा ये कायकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाओ मैं जान जगा धुमक धुमक नाचे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

साल भी नहीं भूलते। मैं शुरू के ये नहीं मारेंगे, मैंने इंदिरा जी को ये इलाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल बैंजा को उन्होंने पूना में जाकर मारा। जनरल डायर

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320
1: CJMR 1320 संदीप एक बारी फतेह सा

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: Show mercy on it.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

वफा तो बेकदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर जिंदगी खेल नहीं ये सिर्फ एक तमाशा है कितनों को झेल हुई जुर्म में इजाफा है हमान आगे देर हुई इस कलम से वादा है इस जंगल को शेर नहीं अंधेरा सिखाता है मैं कलम उठाता तो खुदा चलाता है भाई तो सिखाता है तो आए कुछ लोगों की कितनी कहानियों का ये खुलासा है खून से रंगे खाके शायद खुदा ही घर तक पहुंचाता है।

नहीं, ये सिर्फ एक तमाशा है, देखी दोपहर नहीं, रातों का राजा मैं, हमारा ये देर हुई पर अपनों से वादा है, इस जंगल को शेर नहीं।

0: कोई कैसे महफूज है मेरा सवाल किसी का उरूज
1: हर सर बे असर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर हर सर बे असर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: राजनीति का अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पिंड चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खाली कितड़ बहनूरे लाई आउणगियां हुण नी जज जमानत दिंदा।

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: हेलो
2: हेलो
1: ओ हेलो

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

ना दिखाओ, गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

लटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमॉन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

वाला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा, पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शकर शकर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker.

0: houses in the hood.
1: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320